0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड.
1: न्यू अरुलीको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक. आवर सर्विसेस डिलक्स रूम विथ एसी हट एण्ड कोल्ड वाटर एलईडी टीवी सेमिनार हल रेस्टुरेन्ट एण्ड बार फ्री वाइफाई पार्किङ एरिया फ्यामिलियर एण्ड जोयफुल इन्भाइरोमेन्ट कस्टमर सेटिस्फेक्सन इज आवर कन्जुगेन्स. न्यू अरुलीको होटल एण्ड रेस्टुरेन्ट प्राइभेट लिमिटेड चौतारा स्वागत छ गढी नगरपालिका 5 सिन्धुपाल्चोक. इमेल होटल अरुणी @gmail.com contact 011-620-326-9860-982293. New Aruniko Hotel and Restaurant Private Limited Chautara Sangha Sugari Nagar Palika 5 Sindhupur.

0: एलम्बु एफएम 89.6 MHz.
1: अब रङ थेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेट नला विश्वासी चमक बसुगो लानन सम्बन्ध गरे जखेन अस्थायी तमुला जयमसी तथा नमस्कार लासो फ्याफुल्ला कार्यक्रम स्पार्क माई फेट तथा मला जीवनला छेन गर्ल श्रृंखला अङ्क 18 रङ स्वागत मुला वियोग तामाङ रङ्गा लुइला लानन मोर कदिरी परमेश्वर श्री रङ्दा हलाइदेन मसेसु मुला चुमी लसुला रङ्गा लुइरी थेराङ्ब छ्यान्दी थान्सुला जोदा रङ्से थे छ्यान्दी तब आवश्यकता छोन लबला लागिरी रु लसुला तसै सम्बन्ध तुन्बा दुइला लागिरी जखेन टिका लसुला हिन्बा थेन्दे थेलिछङ रङ निहेन्नुन रङ्ला ग्याम ग्ला लागिरी लगब लामुला दुई लगब लसुला दुई हाला वास्तवी सन्द मिगदेन मुबलानन रङ्दा सम्बन्ध गदे अस्थायी तबा ला लागिरी डिजाइन लबा शोभा तामुला तिगै जेखेन वर्ष वचु भन्दा लाना दुई दोना टिकप लला हिन्बा थेन्दे हालै आत्मिक रूपी स्वास्थ्य ज्याबा मुला बिबरी परमेश्वर जे थेनी गरे रङ्गदेन स्थायी सम्बन्ध कायम थन्बरी सेम लसुबा बिबा आइन्बा पावल बर्नबास गुङला सम्बन्ध अस्थायी मुबा परमेश्वर जे थेनी गरेदा तिगै लुई दुईला लागि छोनन बसुजी देन छ्याम्नोन थेनी गदेसी लानन प्रभावकारी शिवालाजी थेनी गदेला व्यक्ति दो लानन फरक मुबा चुरङलासी कि थेनी गदेसी याकर्गी अर्कला फरक मुबा पावल साहसी तीव्र देन निर्णायक मुबा थे रङला सेमला ताम पाङबरी लोङमा आरे मुबा वर्णमास कोमल जबा विचार मुबा थेसे स्यान्दोला आवश्यकता गरे देन लाना पहिचान लजी चु आइनबकी याकर कि व्यक्ति दो अर्को भन्दा ज्यावा मुबा पावल लाना प्रत्यक्ष मुबा बर्नबास लानन सहयोगी मुबा थेनी गति फरक मुबा देन प्रत्येक से ख्रिस्टला शरीर दिए महत्वपूर्ण भूमिका क्लाङ्ब मुबा थेनी गतिला छ्याम्नोन गे फलदायी मुबा याकर कि दिन पावल देन बर्नबास रङलाहरको मिसनरी यात्री योहन्ना मर्कुस द छ्याम बोर्ला कि अबोर्ला विवाह बारे असहमति तजे प्रेरित 15:39 चु तम्री पावल देन बर्नबास द तम अडिग्न थेन्नी फेजी ओछे बर्नबास से मर्कुस द बोर्सी पानी जहाज्री क्रेजी साइप्रस विवाह ग्लारी निजी चु नाटकीय घटना लिच्छ बाइबल से पावल देन बर्नबास से दोषी छ्याम्नोन सेवा लबा हचिबै उल्लेख अलामुवा परमेश्वर से थेनी गदेला लागिरी योजना लसुब सम्बन्ध जखेन अस्थायी मुबा यद्यपि चु हाइमै हाइमैमा गाह्रो ताबरी हाम्ला याङसे विगतला सम्बन्ध गदेदा खलाबरी आवश्यक मुला जुङरी याङसे सहज महसुस लाजी ताकि याङ याङला भविष्यला लागिरी परमेश्वरला योजना अनुसार नच्छा बडा बडी खम्ला हितुपदेश 18:24 लानन रोगदे मुबा मिलायन सर्वनाश तबरी हाम्ला तसै हाजिबै रोजा जो जो आले भन्दा नाम टासदिब मुला सम्बन्ध एकतर्फी देन सफल तबरी अहम रङ्दछु मि साचिन सेम निभरी हाम्ला थेन्दे रङ थेनी गदेला लागरी हाम्बा लागरी हाम्सुला तसै यदि भावना यङला जब अदृश्य विषम थे जो जो आले आङ्ग देला भन्दा नामला मित्र उदाहरण हिन्बा यदि रङसी चु मेग देला वरिपरि थान्सुजी विषम चु सम्बन्ध गदे लानन हानिकारक आज बताबरी हाम्ला थेनी गदे ग्याम रङ्दा थारेङ थारेङ थान्सुगो थानबरी ज्याबताला बेनान्से रङ्दा रङ रङ रङबा थेरङमन सेम परब आता मुला लानन्से रङ्दा रङ ग्याम याङबा फाइदा गदेला लागिरी जेखेन प्रशंसा लमुला स्यान्दोसी रङ देन जब सम्बन्ध खेन सेमुला जब दोन रङ थेनी गदे ल खराब बेबार बारेरी थेनी गदे दा सामना आला मुसुला थेन्दे थेनी गदे ला आवश्यकता देन छोना लबरे हम्बा लसुला थेनी गदे दा रंगसे थेनी गदे लागरी जे लसुला थे सेमनी मुला हेरंग दसी थेनी गदे सेम मुला की सम्बन्ध जारी तिगै जब दोन चु थेनी गदे ला शर्त कदेरी डिक मुला तसै रंगसे थेनी गदे दा लानन फाइदा किनबरी आकिन्सुर मुला थेनी गदेदा रङला आवश्यकतालाई वास्ता अरे थेनी गदे रङला रङ्ग्याम तिगा याङबरी हामसुला बिवा तामला लागरी जखेन प्रयोग लाबरी सेम मुसुला चु एकतर्फी सम्बन्ध हिन्बा जब हाइमै दमन थेनी गदेन लागेरी थेरी मुसुला तसै थेनी गदे रङला लागरी बिरलाई थेरी तामुला जब रङ चुरङमा हालाइदा पहिचान लसुमुला रङसे थे सिमाना निर्धारण लावरी आवश्यक मुला थेनी गदेदा लानन दुई वा ध्यान थपिन्छुगो थेनी गदेला बेनन आवश्यकता गदे छोना लाभन थेनी गदेला सुपर हिरो दोबरी बाध्य महसुस थलसुगो रङला सट्टा परमेश्वर दा थेनी गदेला प्रदायक सोसुगो रङला आवश्यकता गदेला साचिन ख्याल थन्मा गदेदेन बाङबा सम्बन्ध विकास लाभा छनौट लसुग थेनी गदे जब रो हिन्बा थेन्दी बफदारी दया दिन इमानदारी रङमा गुण गदे थान्मुला बदलारी तिगै याङबला लागिरी जखिन रङ दिन सम्बन्ध माइब गदे ग्याम थारिङ सुगो आमेन रङिला जीवन री परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष पिन्छु गई
0: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङनीला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस्त त्यो समय रिङ बिदा ताजी रङनी छङ मदानु जय मसी नमस्कार।